देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप। काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। बोरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं देख

0: तेरे लिए मैं देखिए लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

0: घूम के आए
1: बम्बई पूना झांसी।
0: और बताओ क्या क्या लाए? शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी। कौवा चले हल्क के दर पहुंची गले भी कैसे दर। कौवा चले हल्क के दर पहुंची गले भी कैसे दर। देखो देखो।

देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। ओरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं देख

0: तेरे लिए मैं देखिए लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

0: से घूम के आए
1: बम्बई पूना झांसी
0: और बताओ क्या क्या लाए शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी चले हल्के फिर बहुत ही गले भी कैसे

दुनिया झोल है। ए जिहान ना कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ काहू सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के

नहीं मुझे, रहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन के सीधे अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन के सीधे अदावत नहीं मुझे।

0: कान।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
0: क्या मुंह काला?
1: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीज़ें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीज़ें।

0: देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच से झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की से अदावत नहीं।

0: तुझे अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
1: अरे जूते का
2: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की चीजें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: एक मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के भी से अदावत नहीं मुझे,
0: कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ
1: सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की थी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की थी से अदावत नहीं मुझे।
0: दुनिया झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं।

झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे।

0: देखते अच्छे बुरे को देखते कहता हूँ साफ बात
1: क्या।
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखते अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला।
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीज़ें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीज़ें।

0: एक तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
0: कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ
1: सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे।
0: दुनिया झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा। कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच

0: क्या?
1: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ बात, अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात।
0: अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की चीजें अदावत।

0: तो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं।
1: अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन के दिल से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के दिल से अदावत नहीं मुझे।
0: कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे।
1: कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की सीधे अदावत नहीं मुझे।

स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश अमर है।

0: स्वर्ग सिधारी वो वीरात्मा देकर ये संदेश जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश
1: धन्य धन्य मुंड।

0: से जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड है।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी। दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों भर आते हूँ, चंदा की चांदनी हो।